0: 生がいることと画家になること。
1: मेरा सपना है सरजार में पुलिस बनना। मेरे को डांस करना बहुत अच्छा लगता है।
2: पता क्यों?
3: El consejo que yo le doy a todos los niños del mundo que sigan sus sueños y que no dejen que